0: जाम सेशन
1: राजा उसे
0: रोजी
1: राजा उसे
0: माइकल व्हाट आर यू गोइंग बाय 5 6 7 8 क्रू वेयर आर यू गोइंग